उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती है।
2: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम कभी नहीं मिलेंगे, मुझे माफ कर देना।

0: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
1: पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शामिल है जहां पानी की किल्लत तेजी से बढ़ रही है और हम दांत साफ करते वक्त नल खुला छोड़ देते हैं। घर का पाइप कई महीनों से लीक है और किसी ने परवाह ही नहीं की। एक रस्ते हुए नल से रोजाना 14 लीटर पानी जाया होता है। तसव्वुर करें और गिनते जाएं, दिन, हफ्ते, महीने, साल, हम कितना पानी जाया कर रहे हैं। नल बंद करें, पाइपों की मुरम्मत करें, पानी का इस्तेमाल समझदारी से करें। ये पानी आपका भी है और आने वाली नस्लों का भी। FM 101 इस्लामाबाद, पानी बचाएं, पाकिस्तान बचाएं।
2: From analog roots to digital perfection, 28 years of pure sound, local stories and non-stop music. FM 101, the voice you trust.
3: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया और चुप हो गया, मैं थक सा गया।

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम ने इस्लामाबाद में मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। शहबाज शरीफ ने रियाज के शाह खालिद बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे पर होसी मलेशिया के घिनौने हमले की शदीद मजम्मत की है। फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगानिस्तान से असलहा स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 T20 बैन अल-अक़वामी मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा।
1: दिस इज FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

कि बीवी कितनी अच्छी है, और तीसरा बुढ़ापे दे विच औलाद दा पता लगता है कि औलाद कितनी अच्छी है। बिल्कुल ये गल मैंने बड़ी चंगी लगी, मैं आख्या थोड़े नाल मैं शेयर करांगा ते जरूर करांगा। ते रजा चौधरी साहब ने एक हुक्म दिता सी मैडम नूर जहां दे गाने दी फरमाइश की सी रजा चौधरी दे नावें ते उन्हां दे ग्रुप दे नावें।

0: दिन के 2 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। सदर मुमलिकत ने आइन की दफा 232 और 234 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज करने के लिए वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। शहबाज शरीफ ने रियाज के शाह खालिद बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर हौसी मलेशिया के घिनौने ने हमले की शदीद मजम्मत की है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुर्रम में शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 12 खारिज और अफगान तालिबान को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने आइन की दफा 232 और 234 के तहत खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी नाफिज करने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ के एडवाइस पर दस्तखत कर दिए हैं। इससे कबल वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना को खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग से सूबाई हुकूमत की दानिस्ता ला ताल्लुकी के पेश नज़र हालात का तफसीली जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ थी कि वह सदर मुमलिकत को मशवरा दें कि हालात की संगीनी के पेश नज़र सदर मुमलिकत आइनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आइन पाकिस्तान के आर्टिकल 232 और 234 के तहत एमरजेंसी का निफाज करें।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

अज का जो टॉपिक है जिसते तुसा सांझ पावनी है वो ये है कि असी जिथे कट्ठे बह के सारे घर दे मिलजुल के खाना खाते हैं या खाना खाते आसे अपनी अपनी जबान दे विच मुख्तलिफ नाम होंदे न, तुसा अज मैं दसना है वे थोड़े घर दे विच थोड़े इलाके दे विच उसनू की आख्या जांदा है। मसलन जिथे फैमिली मैंबर सारे मिल के बह के खाना खाते हैं तुहाडे इलाके दे विच तुहाडे घरां दे विच उस जगह नू उस इवेंट नू की आख्या जांदा है। नंबर है 042-111-0001, इस ते तुसी कॉल करके दसोगे।

0: moving. Hotwired Radio. Today's best music. U101. Electric.
1: सुनते रहिए FM 101.
2: आइए सामीन, अब समात फरमाएं प्रोग्राम राह खुदा। मुकर्रर हैं साहबजादा डॉक्टर सैयद शहजाद हुसैन। ये प्रोग्राम रोज़ाना 3:05 पर नशर किया जाता है।
3: आज हम बयान करेंगे पारा है 9, सूरह अनफाल है और आयत मुबारक है 32 और 33। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाव मैंने और इज़ मैंने जब कालू वो बोले अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, यानी काफर जो थे ना मुशरिक, उन्होंने अल्लाह से कहा कि इनकान हादा होल हक का, कि अगर ये कुरान सच्चा है मिन इंदे का और तेरी तरफ से है, तो फामतिर तो हम पर बरसा, अलैना हजारतन तो हम पर पत्थरों की बारिश करे अल्लाह, अगर ये कुरान सच्चा है। यानी इतने उनके दिमाग ख़राब थे, मिन समाए आसमान से, अवैतना बेजाब नलीम और या दर्दनाक को इज़ाम हम पर ला। यानी इतना ठोस उनको पक्का यकीन था कि कुरान पाक अल्लाह की तरफ से नहीं है, यानी अल्लाह से अज़ाम मांग रहे थे वो लोग। तो फिर अल्लाह ताला ने जवाब दिया, फरमाया वमा वा मैंने और माँ मैंने नहीं, कान अल्लाह हो नहीं है अल्लाह ताला, क्या लियज़बहुम कि तुम्हें अज़ाब करें, वानता फ़ीम कि जबकि मेरे प्यारे हबीब तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। यानी बता दिया, एक नुस्खा बता दिया हमेशा के लिए, क्यामत तलक के लिए, कि जब तक अल्लाह के पैगंबर अल्लाह के रसूल उस कौम में मौजूद होते हैं, जैसे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम जब अज़ाब आने लगा तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को पहले अल्लाह ताला ने उन्हें वही भेज के शहर से बार बार निकाल दिया कि यहाँ से दूर हो जाओ, पीछे पलट कर भी ना देखना। ऐसे तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम, हाँ जैसे नूह अलैहिस्सलाम, तमाम नबी रसूल पैगंबर अल्लाह के, उनको अल्लाह पहले उस बस्ती से बाहर निकाल लेता था और फिर अज़ाब देता। तो यही वो अब यहाँ बयान फरमा रहा अल्लाह, कहता वहाँ कान अल्लाह हो लेबहूँ, मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम पर अज़ाब लाऊँ, वह अनता फ़ीम कि जबकि आपके तुम्हारे दरमियान मेरे प्यारे भी मौजूद हैं, इनके होते हुए कैसे अज़ाब यहाँ ले आऊँ। वह माँ कान अल्लाह हो मोज़बहूँ, और अल्लाह उन्हें अज़ाब करने वाला नहीं है हरगिज़, वह हम यस्तग़फ़िर, जबकि साथ साथ तुम माफ़ी भी मांग रहे हो अल्लाह से। तो फरमाया वमा लहुम अल्लाह युअज़्ज़िबुहुम अल्लाह, और उन्हें क्या है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब ना करे, वहम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम, ये लोग मस्जिद हराम से भी रोकते हैं हाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वमा कानू औलियाओ, और उसके अहल नहीं हैं उसके मतवल्ली जो हैं, इन औलियाओ इल्लल मुत्तकून वला किन्ना अक्सरहुम ला यालमून, और उसके औलिया तो परहेज़गार ही हैं और कोई हो ही नहीं सकता, मगर उनमें अक्सर को ज़्यादातर को इसका इल्म नहीं है। तो ये तो था तर्जमा पेश खिदमत। अब इसकी जो शान नज़ूल, यानी बताया गया है कि जो तरीका बताया गया कि ये हमारे यहाँ का दस्तूर और आईना है, ये हम बदल नहीं सकते कि जब तक हमारा नबी उसमें मौजूद है तो हम अज़ाब कैसे दे सकते हैं। तो वाज़ह तौर पर बता दिया कि तुम लोग जो हो कि तुम्हें अज़ाब नहीं आएगा जब तक मेरे महबूब इसके अंदर मौजूद है। और ये एक बार कुफार ने दुआ की थी कि खुदावंद अगर ये कुरान सच्चा है और इस पर हम ईमान लाते तो तू हम पर पत्थर बरसा दे आसमान से। तो ये इस तरह से उनकी जो दुआ थी, ये अल्लाह ने उसके जवाब में ये आयत उतारी कि मैं कैसे भेज सकता हूँ जबकि रहमत आलमीन इनके अंदर मौजूद हैं और रहमत कामला और अज़ाब में इजमा नहीं हो सकता, इसलिए तुम्हारी मौजूदगी में इन पर अज़ाब नहीं आएगा। ये इस आयत में चंद फ़ायदे हासिल हुए कि एक तो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से अज़ाब इलाही से अमन में रहते हैं, दूसरे कि क़यामत तक इंशाल्लाह मुसलमानों पर आम अज़ाब नहीं आएगा, जैसे कि पहली उम्मतों पर चेहरे बदल मसख हो जाते थे या बदल जाते, किसी को ज़मीन में धंसा दिया गया, किसी को पानी में डुबो दिया गया। इससे मालूम हुआ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक के मुसलमानों के नबी या जलवागर हैं। तीसरे ये कि आपका होना फ़क्र मदीना पाक ही नहीं बल्कि जहाँ पूरे मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया में, आप पूरी कायनात के नबी आखिर जमा हैं हाँ, तो सब में अज़ाब कहीं भी नहीं आएगा, आसमान से लेकर ज़मीन तक, ज़मीन से लेकर आसमान। और चौथी जो इसी तरह के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर बुला लिए गए حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں بلا لیے گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زمین پر ہی جلوہ افروز رہے. وجہ یہ ہے کہ آپ سے دنیا کا انتظام قائم ہے، ہاں ان کے دم قدم سے ہے. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ہاں آپ کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے تخلیق کیا، آپ کے دم قدم سے ہے. زمین سے آپ کا چلا جانا زمین والوں کے لیے مصیبت ہو جاتا. یعنی اسی طرح جو شب معراج میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال سیروں پر آسمانوں کی رہے، پتہ نہیں کتنی مدت ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، مگر یہ کہ اس دوران نہ دنیا وہیں کہ وہیں سٹل رک گئی، ٹائم اینڈ سپیس، اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کتنا عرصہ. جب آقا تشریف لائے تو اسی طرح وہ زنجیری ہل رہی تھی، بستر اسی طرح سے گرم تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں پھر دوبارہ جان آ گئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین صدق.
4: اور مسلمانوں، نماز صحیح وقت پر ادا کرو، اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے، اور دیکھو آپ اس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. I love FM.

0: हमें जो भी इकदाम उठाना पड़ा हम उठाएंगे, और जितनी जल्दी हम सिचुएशन को नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं हम करेंगे। कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ पे नहीं जो एक ऑलरेडी उनका जत्था है, उनको भी मैं सिर्फ इतना मैसेज दूंगा कि उनके लिए बेहतर है कि वो डिस्पर्स हो जाएं, बिकॉज़ अभी उनको कोई प्रोविंशियल प्रोटेक्शन नहीं है, और जो पकड़ा जाएगा उसके साथ पूरी कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर होगी, और फिर उसका ज़िम्मेदार वो खुद होगा, उनको बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे। तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब आप लोग डिस्पर्स हो जाएं ताकि ज़िंदगी को स्मूथ किया जा सके वहाँ पे।
1: जी लुकमान शाह नाम है मेरा, वी न्यूज़ से ताल्लुक़ है। आनज़म नज़ीर तारड़ साहब, ये बता दें कि एमरजेंसी और गवर्नर राज का दौरानिया कितना होगा, और मोहसिन नकवी साहब आप ये बता दें कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और उनकी काबीने का मुस्तकबिल क्या है, क्या वो जेल जाएंगे या पख्तूनख्वा में ही रहेंगे?
2: मोहसिन नकवी साहब नजूमी नहीं है तो उन्होंने कह दिया है कि जो जो कानून के साथ, देखिए ये एक आईनी ऑप्शन इस्तेमाल की गई है, ये मावराए आइन ऑप्शन नहीं है। माजरत के साथ 73 के आइन में ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की स्कीम है, बल्कि 18वीं तरमीम में इसको और वाटर टाइट कर दिया गया, और जो सुपरविजन थी या जो एक पार्लियामान का कंट्रोल है उस पर वो ज़्यादा कर दिया गया। तो ये 232 और 34 ने खुद अपने अंदर वो मैकेनिज्म दे दिए हैं, जो 234 की हद तक, क्योंकि असेंबली को भी गैर फाल किया जाता है और जो असेंबली के कानून साजी के इख्तियारात हैं वो पार्लियामान को दे दिए जाते हैं, तो उसकी जो अपर कैपिंग लिमिट है वो उसमें तय कर दी गई है, वो 6 मंथ्स है एट दी मोस्ट। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस से और दहशतगर्दी से लड़ाई के लिए, मुल्क को महफूज बनाने के लिए जो 232 का मैकेनिज्म है, उसमें जब तक हालात नॉर्मलाइज़ नहीं होते वफाकी हुकूमत की जजमेंट में और सदर साहब की सेटिस्फेक्शन में, वो उस वक्त तक चल सकती है। और उसमें आपको पता है कि हुकूमत गैर फाल रहती है और वफाकी हुकूमत खुद या गवर्नर के ज़रिए सूबे का इंतज़ाम इंसराम चलाती है, तो ये दोनों लिखे हुए हैं आइन के अंदर, उसमें कोई ऐसा इबहाम नहीं है। तो इसीलिए दोनों किक इन किए गए हैं कि सिचुएशंस ऐसी थी कि वो सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो इन दोनों की पूरी थी।
3: जी नय्यर साहब,
4: बहुत शुक्रिया। नय्यर अली फ्रॉम 365 न्यूज़। मेरा सवाल आपसे है वज़ीर दाखला साहब। नकवी साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर इस वक्त बड़ी धूम मची हुई है कि जो साबिक सीएम केपीके हैं उनकी अरेस्ट के हवाले से और प्रोटेक्टिव कस्टडी जिसको अब कहा जा रहा है, तो क्या सोहेल आफरीदी साहब, जुनेद अकबर साहब समेत दीगर जो केपीके के और पीटीआई के रहनुमा हैं उनको प्रोटेक्टिव कस्टडी में लिया गया है, और आगे उनका फ्यूचर क्या है? जैसे अभी पूछा गया था तो ये सब कौम जानना चाहती है कि
0: मैं फिर बड़े क्लियर कर दूं, डेफिनेटली उनको या और जो जो भी जिसको ज़रूरत है हमें लॉ एंड ऑर्डर के लिए उसको मेंटेन करने के लिए हिफाजती तफील में लेंगे, लेकिन उनमें से जो लोग मतलूब होंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा और बाकी सबको लॉ एंड ऑर्डर जैसे ही बेहतर होती है उसको छोड़ दिया जाएगा।
5: सर जी नकवी साहब, ये बता दें ज़ुल्करनैन ARY न्यूज़ से, जब भी कोई इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट देती है तो वो शवायद की बिना पर देती है, क्या आया कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये रिपोर्ट दी है शवायद के साथ कि जो KP हुकूमत की काबीना थी उनके लोगों के तालिबान के साथ लिंकेज थे, वो शवायद यहाँ तक आए हैं? दूसरा ये तासुर दिया गया कि जी दहशतगर्दी का वफाक कहता है कि जी सारे सूबों में हालात ख़राब हैं, तो लॉन्ग मार्च किया गया, वहाँ एक भी दहशतगर्दी का वाकया नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? थैंक यू।
0: देखिए ये तो उनसे पूछें कि वाकया क्यों नहीं हुआ। दो दूसरी बात ये है, मैं उसका एक और चीज़ का भी जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले जो आपने सवाल किया, हाँ बिल्कुल शवाहिद हैं, एक नहीं है, दो नहीं है, तीन नहीं है, दर्जनों में है, ठीक है, इसमें तो क्लैरिटी है। दूसरे नंबर, और ये बात हमने मुज़ाकराती कमेटी से भी की थी, दूसरे नंबर पर मैं आपको सिर्फ एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता देता हूँ। हम अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत ज़्यादा रबता करते हैं और उनके साथ हमारे मुज़ाकरात सऊदी अरेबिया में भी हुए, कतर में भी हुए, चाइना भी बीच में आया, टर्की भी बीच में आया, सारे लोग आए। हमारी उनसे एक डिमांड है जो अभी तक पूरी नहीं वो कर सकते। हम कहते हैं खुल के दहशतगर्दी के ऊपर हमारे साथ और स्टेटमेंट दो। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ये स्टेटस है कि वो आने को तैयार नहीं है। क्या वजह है ये आप उनसे पूछें। अगर आपका मुल्क है तो आप सबसे पहले आएँगे जी दहशतगर्दी के ऊपर हम इकट्ठे हैं, बाकी चीज़ों में नहीं। अब उसके साथ जब इफ़ एंड बट डाल देते हैं कि नहीं ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे, फिर तो नहीं हुआ। تو جو ہمارا افغانستان

0: बेबाक, आज ही अपने बैंक से बनवाएं।
1: This is FM 101.1।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, कोयटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: सुनते रहिए FM 101. 101.

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में एमरजेंसी के नफाज के लिए आज वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा करने में नाकाम रही। वजीर कानून ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के उमूर चलाने के लिए गवर्नर की सरबराही में 11 रुकनी मुशावरती कौंसल तश्कील दी गई है। आज रावलपिंडी में पाकिस्तान ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

बजकर खुला चाहते हैं इस वक्त 26 मिनट और आपका मेरा साथ रहेगा इस प्रोग्राम में ठीक रात के 12 बजे तक। और टॉपिक हमने आपसे पहले ही शेयर कर दिया है कि टॉपिक जिस पे आज हम गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ।

उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भी होंगे और दोस्ती की महफिल भी। आज का हमारा शो उन लोगों के नाम जो हमारी जिंदगी में आते हैं, हमारी मुस्कुराहटों की वजह बनते हैं, हमारी बेवकूफियों में हमारा साथ देते हैं और कभी कभी हमारी खुशियों भी समझ लेते हैं। आज बात होगी दोस्ती की, यारी की, शरारतों की, नाराजगियों की और उन खूबसूरत यादों की जो वक्त गुजरने के बावजूद भी दिल में जिंदा रहती हैं। क्योंकि कहते हैं कि रिश्ते खून से बनते हैं लेकिन कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं और उनमें सबसे खूबसूरत रिश्ता जो है वो दोस्ती का है। आज की इस महफिल को अपने उन दोस्तों के नाम करते हैं जिनके बगैर जिंदगी की कहानी कुछ अधूरी सी लगती है।

जी हम आएंगे, गपशप लगाएंगे आप लोगों के साथ लाइव एक्सक्लूसिवली, और नंबर 0511100109205409201003 कुछ नंबर हैं जो आप लोगों की आसानी के लिए हमने शेयर किए हैं। अपने सेल फोन के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम पैगाम, और उस मैसेज को आपने सेंड करना है 4471 पर अपने जवाब के साथ। कोई भी अच्छी सी बात, कोई अच्छी सी याद, कोई अच्छी सी शरारत, और जैसे मैं आज शो करने आया हूँ, या मैं जानता हूँ, सिर्फ मैं ही जानता हूँ।

0: ओके जी, आप लोगों की कॉल शामिल करते हैं, आप लोग कॉल्स कर सकते हैं 0511100101 और गपशप लगाएंगे हम लाइव एक्सक्लूसिवली आप लोगों के साथ। और बातचीत आपकी रिलेट करनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के आसपास, और कोशिश कीजिएगा क्वालिटी गुफ्तगू कीजिएगा ताकि ना हम बोर हों, ना सुनने वाले बोर हों, और आपका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो सब तक पहुंच जाए। देखते हैं जी कौन है, कहां से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं या क्या कहना चाहती हैं। देखते हैं कौन है, कहां से है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी।
1: यूसुफ भाई तेरे रहमान बोलना था कि हाल चाल है।
0: शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं,
1: अल्लाह ने शुक्र है, अल्लाह ने एहसान है। मैं क्या मेरे भाई हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक मेरे भाई ने जिंदगी विच और ज्यादा आसानियां पैदा करे और हर मुसीबत बला बीमारी परेशानी टाल दे। को खैरियत है
0: जी? जी खैरियत है, खैरियत है
1: जी। कह रहे थे कि शो करने आए हैं तो बड़ी मुश्किल से, तो मुझे पता है, तो क्या है, खैरियत तो है ना
0: जी? जी एंड पे इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर कर देंगे। जरा स्टार्ट में कह रहा हूँ, आप जो लिसनर्स हैं उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इस चीज में, उनके लिए तो हमने शो अच्छे से करना है ना। जी जी बताएं, आप दोस्ती के हवाले से अगर कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो बताएं।
1: दोस्ती के हवाले से मैं तो यही कहूंगा कि आजकल के तो दौर में तो दोस्ती जो है ना ये मुनाफत का लिया है। आजकल को जो दौर जा रहा है तो हम तो जो मेरा जो दोस्त है वो तो बहुत ही पुराना सा दोस्त है, क्योंकि बहुत ही इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं स्कूल में भी
0: जी।
1: और वो अभी एक पेट्रोल पंप पर चला गया था तो मैंने उसको मजाक में ये कहा था कि बोले तुम्हें से मेरी शादी करा दो, तो उसने मैंने उसके साथ पहले के मजाक किया था तो उसने मेरा ये वादा पूरा कर दिया था।
0: अच्छा।
1: और उसके बाद फिर हमारी गाड़ी के नीचे एक बंदा आया, बंदे की डेथ हो गई, तो फिर उधर भी वो पता नहीं कितने पैसे लेके पहुंच गया है स्पेशल कार करके, गाड़ी करके। तो हमारे हर दुख और सुख जिधर भी हम उसको बुलाते हैं, हमारे दुख में वो शरीक होता है और हम उसके दुख में शरीक होते हैं।
0: दोस्त का नाम क्या?
1: रफाकत।
0: रफाकत, सही है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने अपनी दोस्ती के हवाले से बातचीत की।
1: सुनने वाले को सलाम और आपके लिए ढेरों मेरे भाई को अल्लाह पाक सलामत रखे और आसानियां पैदा करे।
0: थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का 0511100101।

0: रात के 11 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। फातिमा तौसीफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी के नफाज के लिए आज वजीर आजम की एडवाइस पर दस्तखत कर दिए। वजीर आजम ने आज इस्लामाबाद में विफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे में दहशतगर्दी का खात्मा करने में नाकाम रही। वजीर कानून ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के उमूर चलाने के लिए गवर्नर की सरबराही में 11 रुकनी मुशावरती कौंसिल तश्कील दी गई है। आज रात रावलपिंडी में पाकिस्तान ने 3 T20 बैन अलाक्वामी सीरीज के दूसरे मैच में श्रीलंका को 82 रन से हरा दिया।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

थर्सडे नाइट उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है और अपने ही हाथों से अपने दोस्त को इस दुनिया से हमने रुखसत किया है। ये भी एक जिंदगी का दस्तूर है। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें आपका कोई कसूर नहीं है कि आप लोग जो है वो इतने, मैं पूरे का पूरा शो जो है वो ऐसे कर दूं। फर्स्ट तो मेरा बिल्कुल आज नहीं था कि मैं आज आ सकूंगा, लेकिन फिर भी कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको मुकम्मल करनी होती हैं। तो वही बचपन की दोस्ती, वही बातें, वही शरारतें जो मैं पहले घंटे में काफ़ी मैंने आपसे डिस्कस की, लेकिन मैं इमोशनल हो गया था बीच में कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक जो है वो लेनी पड़ी। थैंक यू सो मच अगर आप साथ जुड़े रहे हैं और आपने इस म्यूज़िक को भी बर्दाश्त किया है।

कितनी सारी बातें, कितनी सारी यादें। मैं रिसेंटली भी कुछ पिक्चर्स भी देख रहा था और शायद मैंने ये जो अकाउंट फेसबुक का, इसको कभी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल या कभी किया नहीं, देखा नहीं कभी किसी के, यानी सिवाय एक इंसान के। उनको मैं बहुत ज़्यादा जो है वो हर एक चीज़ को सुन भी रहे हैं साथ साथ, और बहुत ज़्यादा मैंने देखा। लेकिन आज शायद एक दो दिन से मैं ऑफलाइन था, देखा ही नहीं है। और जब से मैं स्टूडियो आया और मैं वही अमजद की कुछ एक दो आइडियाज़ थी उनको मैं देख रहा था, तो सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं वो से मेरे साथ ही उनकी। हर मोमेंट को कैप्चर करना और हर बात को, और इवन के

उसकी जुदाई बहुत तकलीफ देती है, खासतौर पर जब वो इंसान सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उनके बहुत करीब हो। कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं मगर दिल से कभी नहीं जाते हैं। उनकी आवाज खामोश हो जाती है मगर उनकी यादें हमेशा जो हैं वो हमसे बातें करती हैं। वो लम्हे जो हमें साथ गुजारे होते हैं हमेशा याद आते हैं।

जिंदगी में शायद मैं कुछ ऐसे पल हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ या मैं हर्ट हुआ, स्पेशली वालदा की डेथ, उसके बाद मेरे भाई की डेथ, और तीसरा ये इंसान है ऐसा कि, लेकिन उन दो जो मेरे फैमिली में जो डेथ्स हुई हैं उसमें अमजद की पूरी फैमिली जो है वो मेरे मेरे को साथ रही है, तो मुझे वो कमी महसूस होने ही नहीं दी

बचकर वहाँ जाते हैं, 12 मिनट वापस आते हैं। आप अपने वाले से बात कर सकते हैं, आप हमें बताएं कि अपने दोस्तों के हवाले से कुछ, उनकी बातों के हवाले से, उनकी शरारतों के हवाले से, नाम जरूर शामिल कीजिएगा।

यार जिना दे पान सदाइया कि आपकी बात सुन के महसूस होता है कि वो सिर्फ आपके दोस्त नहीं थे जी, बिल्कुल दोस्त नहीं थे, एक ऐसा सहारा था जो हर वक्त मौजूद होता था। और जब एक ऐसा इंसान बिछड़ जाए तो जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो खाली हो जाता है। हमारे को और बहुत अच्छे दोस्त हैं और अच्छा वक्त गुजरा है जिनके साथ भी, और हमेशा से एक अच्छे लेवल तक वो क्रिकेट खेलते रहे हमारे साथ। और अब भी जब भी कभी मुलाकात होती थी तो एक फोन उनका जाता था अमजद को, दूसरा फरमान। अभी उनको मैंने मैसेज किया अगर वो अवेलेबल हैं तो मैं उनकी कॉल भी शामिल करूँ। वो खुद बेचारा बड़ा इमोशनल है।

0: ओके जी, फरमान की हमें आ रही है कॉल, तो फरमान से हम करते हैं जी। फरमान, अस्सलाम वालेकुम, आप लाइव हैं इस वक्त।
1: वालेकुम सलाम, ये सब क्या हाल को?
0: ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक हैं,
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त आप लाइव हैं और पूरा पाकिस्तान और इवन के पूरी दुनिया में आप जहाँ जहाँ इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है लोग सुन रहे होंगे आपको।
1: अच्छा अच्छा, बहुत शुक्रिया यूसुफ, आपने मुझे लाइव लिया।
0: मैंने अभी अनाउंस भी किया थोड़ी देर पहले, काफ़ी मैं कोशिश कर रहा था मैं अपना शो जो है एक नॉर्मल तरीके से जो है वो कंडक्ट करूं, लेकिन वो जो चीज़ आप फेस कर रहे हैं वही मैं फेस कर रहा हूं, तो वो दिल कहीं ना अटका हुआ है। मैंने अपने हर शो में अपने लिसनर से कहता था कि आप लोग दुआ करें कि अमजद ठीक हो, तो ज़रूर मैं उसको अपने शो में जो है वो स्टूडियो में ले के आऊँगा, वो आप लोगों से जो है बातचीत भी करेंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, तो अब हम
1: बिल्कुल
0: उनकी
1: यूसुफ, इसमें कोई शक नहीं है।
0: उनकी मगफरत के लिए अब दुआ की रिक्वेस्ट जो है वो सबसे की है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा बनता है यूसुफ, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा था, 20 से 25 साल तकरीबन एक साथ गुजारे, और इतना जल्दी एक दोस्त को कैसे भुला सकते हैं जो सुबह शाम एक साथ होते थे, मिलते थे,
0: कोई अच्छी सी
1: और एक
0: बात उसके
1: एहसास
0: हवाले
1: था।
0: से, आपके साथ भी बड़ा अच्छा जो है वो वक्त गुजर, ये आखिरी जो कुछ आयाम थे हमारे उस इलाके में, तो ये तो हमने तकरीबन ऑलमोस्ट 3-4 साल बहुत अच्छे जो है वो गुजारे, तकरीबन ऑलमोस्ट डेली हमारी मुलाकात होती थी हम तीनों की।
1: जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है।
0: कोई ऐसी बात, कोई ऐसी याद जो अभी भी आप अगर सोचते हैं ना, तो मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है स्टूडियो में शायद कहीं बाहर बैठा होगा मेरा वेट कर रहा होगा।
1: यार यूसुफ, मसला पता है क्या है, मुझे तो ये पहले यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच में नहीं है। वजह ये कि हमने ऐसे टाइम गुजारा था ना, क्योंकि वो कोई एहसास ऐसे होता है कि उस बीमार हुए कुछ हुए, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले रोजाना हम निकलते थे, बैठते थे, घूमते थे, फिरते थे, तो एकदम किस तरह किसी को एहसास हो सकता है कि हमारे बीच में अब नहीं है।
0: सही है, बिल्कुल
1: तो
0: ऐसे ही।
1: वो इंसान, मैंने एक सबक इससे हासिल किया है कि मतलब बंदा जिंदगी के अंदर ना अपने अंदर से मैं निकाल ले। वजह यह कि इंसान एक गुब्बारा है, जब इसकी हवा निकल गई तो बात खत्म।
0: इंसान एक गुब्बारा है। फरमान के हवाले
1: हाँ
0: से
1: बस वो
0: जी,
1: हम,
0: मैं आपको बताता चलूँ, फरमान बड़े अच्छे लेवल पर पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो भी खेल रहे हैं, बड़े अच्छे हमारे दोस्त जो हैं, और ऑलमोस्ट अमजद का मेरा और फरमान जो है बड़ा क्लोज एक रिलेशन रहा है हमेशा से।
1: बस यूसुफ यार कसम से अभी भी रोना इतना आता है कि मैं उनके घर नहीं जा सकता। वो फौतगी वाले दिन भी जनाजे से सीधा घर आया हूँ,
0: बिल्कुल
1: उनके अबू
0: आपकी,
1: लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई, क्योंकि वही वजह है कि उनको भी उल्टा दुख होगा ना। तो
0: चले
1: ये है कि
0: फरमान
1: उनके भाई से
0: इंशाल्लाह।
1: रब्ता हो जाता है
0: जी
1: कॉल पे।
0: जी जी जी मैं मज़ीद जो है ना खुद इमोशनल होऊंगा, ना कोशिश करूंगा जो लिसनर्स हैं उनको भी, तो इंशाल्लाह आपसे गपशप लगाएंगे और बहुत सारी
1: बस
0: दुआएं, बहुत सारी दुआएं अपने दोस्त के लिए।
1: यार आपसे ये रिक्वेस्ट है, जो भी मिलता है उनके लिए ये मैसेज दो कि यार उसके लिए दुआ करो, और हम भी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा और उसका एक ऐसे रिश्ता है कि पूरी जिंदगी वो खत्म नहीं हो सकता है।
0: ठीक है, थैंक यू सो मच फरमान, बहुत शुक्रिया, और बड़े मुश्किल से मैंने इसको कंट्रोल किया, अभी ये मुझे मालूम है कि ये शायद मैं थोड़ा बहुत स्ट्रांग होऊंगा इस मामले में, लेकिन ये नहीं है। हाय हाय हाय, 11 बजकर हुआ से आते हैं सामिन, इस वक्त 24 मिनट और हमारा साथ है कुछ मज़े पल का। एक मेरा यारा, एक ओधी यारी,

थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के मैसेजेस। और सिद्धा मार्शल मौजूद हैं और कहती हैं कि आप सब्र करें, अल्लाह उनकी मगफ़रत करेंगे और ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टेक्स्ट मैसेज का। जिसमें आज़म मार्शल मौजूद हैं और मैंने अभी ट्यून किया है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कमेंट का। स्टूडियो सीन विदाउट विद ऑफ लाइट पीसफुल। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं जी कराची से, और मैं इतने सीरियस किस्म का शो कर रहा हूँ और देख लें कि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है। फिर हम शायद आप हमें ढूंढ रहे हो, हम आपको ढूंढ रहे हों कि किसी का मैसेज आया नहीं या हमने पढ़ा नहीं है। बहुत मुख्तसर सा वक्त है।

स्नैन दाऊद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई स्नैन दाऊद फ्रॉम मरी। भाई अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियां और कामयाबी अता करे। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी मैस कमेंट का।

लाइफ में कभी सोचा नहीं था कि एक दिन उसकी बात करने के लिए सिर्फ उसकी यादें जो हैं वो सहारा रह जाएंगी। यारीदा एहसास हमेशा। इंसान ने बहुत सारी प्लानिंग्स की होती हैं लाइफ में कि मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने अपने बच्चों के लिए ये करना है। इतनी यंग एज, ऑलमोस्ट 33 साल, फरमान की बात याद है मुझे, एक हवास ही है बस इंसान में, मैं और सिर्फ मैं, तो मैंने ये कर दिया। ज़ारे में इंसान कुछ भी नहीं, इंसान हमसे बहुत अच्छे लोग भी इस दुनिया से चले गए हैं।

तो फिर सब कुछ इतने अचानक से है कि अभी तो सब कुछ बहुत ताज़ा जो है वो फील होता है। कभी दिल करता है होगा कि मैसेज किया जाए, इवन के कन्वर्सेशन में वॉइस मैसेजेस में सुन सुन के मैं उसको बार बार सुन रहा हूँ, पूरी पूरी कन्वर्सेशंस जो हमें पढ़ता हूँ। यकीन ना आना एक बहुत शायद ज्यादा लफ्ज होगा, फील भी नहीं आती कि ऐसा कुछ हुआ।

0: एक मैं हूँ कि यहाँ पे शुगर और उनके भाई जो हैं उमर भाई, वो मुझे सुन भी रहे हैं और कहते हैं बस कर
1: दे।
0: और उस पूरे वक्त में ना जो भी आके को पूछता था, अच्छा बताएं जी अमजद के हवाले से, तो कहते हैं भाई हमारा था लेकिन वो सामने बैठा है, वक्त उसके साथ गुजरा है।

इस वक्त शायद लव्स मुझे कम पड़ रहे हैं, कुछ माइंड में नहीं आ रहा, बिल्कुल ब्लैंक जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कि कुछ लोगों की जुदाई का दुख इसलिए गहरा होता है क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी में खुशी, अपनापन और सुकून जगह भर दिया होता है। वो चले जाते हैं मगर उनका दिया हुआ प्यार हमारे अंदर रह जाता है। दोस्त पास नहीं है लेकिन उसकी अच्छाई और जो यादें हैं ना, हमेशा जिंदगी का हिस्सा रहेंगी।

जिंदा रहना अर्श पानी जाने जिंदड़ी जिंज भी होवे जलिया फिर भी कट ही जानी है मायूसी नहीं चंगी हुंदी ये दुनिया ते फानी है रब दी सुन वो की कहंदा है मुश्किल नाल आसानी है सुनो गाफिल चलिया बंदिया।

हेलो वंडरफुल टाइम। अगली मरतबा जब आपसे मुलाकात होगी, और जब भी मुलाकात होगी, होपफुली एक नए अज़म के साथ, और भूले नहीं होंगे आप। लेट्स प्रूव इट, या आपने साबित करके दिखाना यू डोंट हैव अ शॉर्ट मेमोरी। और आप लोगों से जस्ट अब यही एक दुआ है, इल्तिजा है कि आपने बहुत सारी दुआएं करनी है। तन्हाई से छुटकारा पाने को अपनाया था तुम्हें, मुकद्दर है ये तन्हाई, ये ना मालूम था हमें। घर के तन्हाई में तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें, अकेले में होना है ये महसूस करने का तुम्हें। आ जाना, मिटा जाना इस तन्हाई को, कि फिर से ये दावत हम देते हैं तुम्हें। अल्लाह हाफिज।

खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पे डाल के पर्दा, मुझे अच्छों में डाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। अपने दामन से करके वाबस्ता हर मुसीबत को टाल रखा है। और मैं तो कब का मिट गया होता, मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है, तेरी रहमत ने पाल रखा है।

कोई अच्छी बात, कोई खूबसूरत बात, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो कि समाहतों तक पहुंचे तो किसी का कुछ भला हो सकता है, प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा, मैं मुंतजर रहूंगा। तो जनाब यूं आसानियां बांटने का एक सिलसिला भी जुटा रहेगा और शेर व शायरी भी चलती रहेगी। मेरा साथ देते रहिएगा, अपने होने का एहसास दिलाइएगा।

हम बेबस, हम मजबूर पिया, हम बेबस, हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। हम किरची किरची दिल वाले, हम हो गए चकना चूर पिया। हम बेबस, हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। हम किरची किरची दिल वाले, हम हो गए चकना चूर पिया। अब कौन अनल हक हू बोले, अब कौन बने मंसूर पिया। जब नाम तुम्हारा सुनने में हम हो जावे मसरूर पिया। एक बार हमें अपना कहकर तुम कर दो ना मगरूर पिया। एक बार हमें अपना कहकर तुम कर दो ना मगरूर पिया। और हमें नाग डसे बेचैनी के, तुम जब से हो महजूर पिया। हम आखिर तेरी चाहत में हो बैठे हैं महसूर पिया। इस दिल अंदर तस्वीर तेरी, तेरा चारों जानिब नूर पिया। एक सच्ची प्रीत के बंधन में हमें मर जाना मंजूर पिया। हम बेबस, हम मजबूर पिया, मत हमसे होना दूर पिया। मत हमसे होना दूर पिया।

वो कहती है सुनो जाना, वो कहती है सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश ये बदगुमानी की कहीं पिघला न दे इसको।

वो कहती है, सुनो जाना, मोहब्बत मोम का घर है, तपिश ये बदगुमानी की कहीं पिघला न दे इसको। मैं कहता हूं कि जिस दिल में जरा भी बदगुमानी हो, वहां कुछ और हो तो हो, मोहब्बत हो नहीं सकती। वो कहती है, सदा ऐसे ही क्या तुम मुझको चाहोगे कि मैं इसमें कमी कोई भी गवारा कर नहीं सकती। मैं कहता हूं, मोहब्बत क्या है ये तुमने सिखाया है, मुझे तुमसे मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं आता। वो कहती है, जुदाई से बहुत डरता है दिल मेरा कि खुद को तुमसे हटकर देखना मुमकिन नहीं है अब। मैं कहता हूं, यही कच्चे बहुत मुझको सताते हैं, मगर सच है मोहब्बत में जुदाई साथ चलती है। वो कहती है, बताओ क्या मेरे बिन जी सकोगे तुम, मेरी बातें मेरी यादें मेरी आंखें भुला दोगे। मैं कहता हूं, कभी इस बात पर सोचा नहीं मैंने, अगर एक पल को भी सोचूं तो सांसें रुकने लगती हैं। वो कहती है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत इस कदर क्यों है कि मैं एक आम सी लड़की तुम्हें क्यों खास लगती हूं। मैं कहता हूं, कभी खुद को मेरी आंखों से तुम देखो, मेरी दीवानगी क्यों है ये खुद ही जान जाओगी। वो कहती है, मुझे वारफ्तगी से देखते क्यों हो कि मैं खुद को बहुत ही कीमती महसूस करती हूं। मैं कहता हूं, मताए जहां बहुत अनमोल होती है, तुम्हें जब देखता हूं जिंदगी महसूस करता हूं। वो कहती है, मुझे अल्फाज के जुगनू नहीं मिलते कि तुम्हें बता सकूं कि दिल में मेरे कितनी मोहब्बत है। मैं कहता हूं, मोहब्बत तो निगाहों से छलकती है, तुम्हारी खामोशी मुझसे तुम्हारी बात करती है। वो कहती है, बताओ ना किसको खोने से डरते हो, बताओ कौन है वो जिसे ये मौसम बुलाते हैं। मैं कहता हूं, ये मेरी शायरी है आईना दिल का, जरा देखो बताओ क्या तुम्हें इसमें नजर आया। वो कहती है कि आतिफ जी बहुत बातें बनाते हो, मगर सच है ये बातें बहुत ही शाद रखती हैं। मैं कहता हूं, ये सब बातें फसाने एक बहाना है कि पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाए, पल कुछ जिंदगानी के तुम्हारे साथ कट जाए। ये बातें ये फसाने एक बहाना है, फिर उसके बाद खामोशी का दिलकश रक्स होता है, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं, निगाहें बोलती हैं और लब खामोश रहते हैं।

कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तीरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब ना था कि मैं बेगाना या लम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नीम बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव हो रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साये में छुपके जी लेता, घनेरी जुल्फों के साये में छुपके जी लेता। मगर ये हो ना सका, ये हो ना सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयातो मौत के पुरहोल खारजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयातो मौत के पुरहोल खारजारों से। न कोई जादाए मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर मैं जानता हूं, मैं जानता हूं मेरी हम नफस। मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है।

कभी-कभी मेरे दिल में ख्याल आता है साहिर लुधियानवी। ऐसे ख्यालात जिंदगी में उभरते हैं इंसान ना चाहते हुए भी, जो हमारे जहन में पनपता रहता है उसको उसको परवान चढ़ने देता है, और कभी वो चाहता है कि वो परवान चढ़े, वो जज्बा, वो एहसासात। और लेकिन क्या है कि ये जो महजूरी का नशा हुआ करता है, महजूरी की एक लज्जत हुआ करती है, कुछ लोग इससे बहुत महजूज होते हैं। क्या है कि हम इंसानों को अपना आप मनवाना चूंकि अच्छा लगता है, हमें पसंद होता है। और कैसी अजीब बात है कि जब हम किसी तकलीफ को सह लिया करते हैं, किसी महजूरी को सह लिया करते हैं, किसी कर्ब को सह लिया करते हैं, तो हमें यूं लगता है कि हमने अपना आप मनवा दिया है, कि हम क्या कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। सह सह जोड़ संगत दे वेखे ते आखिर विथा पईयां, जिना बिना एक पल सी ना लंघदा और शक्लां याद न रहियां। बड़े सख्त जान हुआ करते हैं हम इंसान, जिस कयामत का तसव्वुर भी नहीं कर सकते, वो गुजर जाती है और सह लिया करते हैं। तो ऐसा ही है जनाब कि ये जिंदगी है और इसने बीतना है, इसने गुजरना है। कभी जिंदगी को हम गुजारा करते हैं और कभी हम बीत जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता। कुछ राहें ऐसी राहें हुआ करती हैं इस जिस्त के सफर में, जहां इंसान को यूं महसूस होता है कि वो हकीकत से कुछ बाहर आ चुका है, उसको अपना वजूद कहीं अलग महसूस होता है। कुछ ऐसे चेहरे हुआ करते हैं हमारी जिंदगी में, कुछ ऐसे नाम हुआ करते हैं, कोई ऐसी खुशबू हुआ करती है, कोई ऐसा लम्स हुआ करता है जो हमें मुनफरिद लगता है, और हम उससे निस्बत रखते हुए खुद को मुनफरिद गर्दानने लग जाते हैं। और ऐसे लगता है कि उस राह में बहुत दूर निकल आए हैं, कभी वापसी का कोई रास्ता और ढूंढने पर कोई राह मिलती नहीं है। लेकिन फिर भी इंसान है, इरादा इख्तियार में वुसत है, राहें निकाल ही लिया करते हैं। लफाजी भी हुआ करती है हमारे पास और सोच भी है।

कल जिक्र किया था कि हर इंसान की एक अपनी अपनी ताकत है, एक अपनी अपनी बर्दाश्त है। सब पर ना खुशियां एक सी उतरती हैं, ना दुख एक से हुआ करते हैं। इसी तरह कुछ वादे भी हुआ करते हैं हम इंसान, जो करते तो ये सोच कर हैं कि इन वादों को वफा करेंगे, लेकिन इस जिंदगी के सफर में इतना कुछ रुनुमा होता रहता है कि भूल जाया करते हैं उन वादों को हम, या भुला दिया करते हैं। गलत हो आपका कोई वादा कभी, खुदा ना करे, मगर हजूर को आदत है भूल जाने की, और उम्मीद तो बन जाती, तस्कीन तो हो जाती। वादा वफा ना करते, वादा तो किया होता। कभी कभी बस इतने से भी तसल्ली मिल जाती है कि वादा तो कर लिया, लेकिन एक वक्त गुजर चुका हो और वो बहुत कुछ बदल चुका हो वो वक्त हमारी जिंदगी में, और वो वादे भी साथ साथ हो, फिर राह को बदलना पड़े, फिर राह बदलनी पड़े, वापस मुड़ना पड़े, वो एक कठिन लम्हा हुआ करता है। लेकिन फिर वही बात के हम इंसान हैं, उम्मीदें निकाल ही लिया करते हैं कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई रास्ता हमारे सामने आ ही जाया करता है, कोई खूबसूरत मोड़ देने की काविश हम कर ही लिया करते हैं अपनी जिंदगी को। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी, इस तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज।

बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा, और वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम।

मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं। पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। चार दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है, उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है। जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी, अब तो हर सांस गिरांबार हुई जाती है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है, किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है। कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की सूरत कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। मेरी उजड़ी हुई नींदों के शबिस्तानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है, कभी अपनी सी कभी गैर नजर आई है, कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है। प्यार पर बस तो नहीं है मेरा, लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या ना करूं। तूने खुद अपने तबस्सुम से जगाया है जिन्हें, उन तमन्नाओं का इजहार करूं या ना करूं। तू किसी और के दामन की कली है, लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती हैं। तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिस की कसम, तेरी पलकें मेरी आंखों पे झुकी रहती हैं। तेरे हाथों की हरारत, तेरे सांसों की महक तैरती रहती है एहसास की पहनाई में, ढूंढती रहती हैं तखय्युल की बाहें तुझको सर्द रातों की सुलगती हुई तन्हाई में। तेरा अल्ताफ़ो करम एक हकीकत है, मगर ये हकीकत भी हकीकत में फसाना ही ना हो। तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात प्याम दिल के खून करने का एक और बहाना ही ना हो। कौन जाने मेरे इमरोज का फर्दा क्या है, कुर्बतें बढ़ के पशेमान भी हो जाती हैं। दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं। मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, मेरी दरमांदा जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, मेरा हासिल मेरी तकदीर बता दे मुझको।

0: मेरा नाम है आतिर अली सैयद और मुस्ताफ़ फ़तेह शब FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। रेडियो पाकिस्तान का इस्लामाबाद स्टेशन। 12 बजकर तकरीबन 55 मिनट हुआ चाहते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं 9202540 पर। एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम। आतिर, मैं परवीन से बोल रही हूँ कराची से।
0: ठीक है, कैसी हैं आप? ठीक है
1: जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं अच्छा हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह।
1: आज आपने साहिल लुधियानी साहब की कहीं सुनाई, मेरे लिए बड़ी अच्छी लगी।
0: जी।
1: बहुत अरसे के बाद सुने, बहुत अरसे के बाद। लेकिन आदिल, इनकी एक वो भी है ना, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे।
0: ताजमहल।
1: हाँ, वो एक शहनशाह ने बना के हसीन ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक।
0: जी
1: वो आप पढ़ेगा है तो मेरे पास, लेकिन आप पढ़ेंगे तो और ज्यादा अच्छी लगेगी।
0: जी जी जरूर जरूर।
1: हाँ, वो शामिल कीजिएगा। आज भी आपने बहुत अच्छे शायरी तो बहुत ही अच्छी शामिल की है।
0: बहुत
1: सॉन्ग
0: शुक्रिया।
1: भी अच्छे थे, अच्छे थे। वो मांग रहा था जब खुदा, वो तो खैर उसका तो म्यूजिक इतना खूबसूरत है, वो शुरू होता है तो एक अजीब शहर बन जाता है। बहुत अच्छी, बड़ी अच्छी कंपोजिशन है।
0: जी बहुत शुक्रिया।
1: तो बस ये आज जरा थोड़ा सा दिल बड़ा उदास हुआ। आपसे पहले मैंने थोड़ा सा वो यूसुफ करते हैं गालिबा ना, वो कर रहे थे शो।
0: अच्छा।
1: उनके किसी बहुत करीबी दोस्त की डेथ हो गई है।
0: ओहो
1: बहुत
0: हो।
1: अफसरदा थे वो।
0: अच्छा
1: मेरे दिल इतना बुरा हुआ ना दिल सुन के, बहुत बुरा हुआ।
0: अच्छा
1: बहुत ज्यादा अपसेट थे, बस उन्हीं की बातें कर रहे थे।
0: अच्छा अच्छा
1: अल्लाह
0: अच्छा
1: ताला बस रहम फरमाए और ऐसे
0: आमीन आमीन आमीन
1: उनको सब्र जमील अता करे। ये
0: आमीन।
1: दोस्त है, बहुत पुराने दोस्त थे, बता रहे थे। बेचारे फैमिली मेंबर्स का तो पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा।
0: जी
1: अल्लाह सबको सब्र जमील अता करे।
0: आमीन आमीन
1: तो
0: आमीन।
1: बस मैं ये सुनाती हूँ आपको। आते हैं कल आपका मेरी बात हुई आपसे, अचानक मेरी लाइट गायब,
0: अच्छा जी
1: तकरीबन आधे घंटे नहीं आई, 40 मिनट।
0: अच्छा जी,
1: अल्लाह मुझे इतना अफसोस।
0: कुछ बेहतर ही
1: आई,
0: होगा जी।
1: वाईफाई वगैरह सब बंद हो जाता है ना, तो बड़ी
0: जी जी
1: वो आई तो मैंने देखा चल रहा था प्रोग्राम, आपका टाइम था, मैंने कहा चलो अल्लाह का शुक्र।
0: जी
1: तो
0: सुनाइए।
1: जनाब, अब मैं आपको सुनाती हूँ कि वजह है तस्कीन जुनून, मसले निकारा भी नहीं, इश्क आसा है मगर इस कदर आसान भी नहीं। हर तजल्ली के लिए जर्फ नजर है दरकार, जलवा अर्जा है मगर इस कदर अर्जा भी नहीं। जाने के सोच के हर राह में रुक जाता हूँ, इस मिलने उससे मिलने का किसी मोड़ प्रेम का भी नहीं। हर नफस खींच रहा है कोई रग रग से लहू, और नश्तर कोई बेवस्ते रगे जहाँ भी नहीं। जी बेवस्ता नश्तर कोई रगे जा भी नहीं। काफले हैं कि गुजरते ही चले जाते हैं, मंजिलें हैं कि किसी सिमत नुमाया ही नहीं। गुल क्या है जिक्र है, गुल का क्या जिक्र है दोस्त मेरे दामन पर, गुल का क्या जिक्र है दोस्त मेरे दामन पर, एक मुद्दत से किसी खार का एहसास भी नहीं। कौन समझेगा मेरे जर्फ जुनों की वसत, मैं परेशान हूँ मेरा हाल परेशान भी नहीं। तू इल्जाम मेरे ज़र्फ़ जुनून पर न तराश, इश्क काफिर नहीं इश्क मुसलमान भी नहीं। शोर उठा दूंगा, ये शोर जो है ये मंजूर हसन शोर साहब की गजल है जो मैं आपको सुना रही हूँ ना। शोर उठा दूंगा मैं गुलो लाला के पर्दे, लेकिन यहाँ कोई महरम इसरार गुलिस्तां भी नहीं।
0: बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: बड़ी अच्छी लगी मुझे इनकी, ये बहुत पुराने शायर है मेरे ख्याल से, बहुत ही पुराने।
0: ठीक है,
1: प्रोग्राम तो आपका खैर होता ही, बहुत अच्छा है, कल का भी बहुत अच्छा, आज का भी बहुत अच्छा।
0: बहुत शुक्रिया।
1: नहीं हो भी, मैं आपको भी मैं पूरे ही सुनती हूँ। मुझे लेट लेट तो सोते सोते 3 बज जाते हैं, मैंने कहा आधी रात तो गुजर गई आतिर के
0: जी।
1: साथ भी।
0: बहुत शुक्रिया जी।
1: अच्छा आतिर, कल बारिश में परेशानी तो नहीं आपको?
0: नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं, सलामत रहिए, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया,
1: खुश रहें,
0: आबाद
1: रहें,
0: रहें। बहुत
1: खैरियत से।
0: अल्लाह हाफिज़।
1: बहुत शुक्रिया।

कोई ऐसा जादू टूणा कर, कोई ऐसा जादू टूणा कर, मेरे इश्क में वो दीवाना हो, यूं उलट पलट कर गर्दिश की मैं शमा वो परवाना हो। जरा देख के चाल सितारों की कोई जायचा खींच कलंदर सा, कोई ऐसा जंतर मंतर पढ़ जो कर दे बख्त सिकंदर सा, कोई चिल्ला ऐसा काट के फिर कोई उसकी काट न कर पाए, कोई ऐसा दे तावीज मुझे वो मुझ पर आशिक हो जाए, कोई फाल निकाल करिश्मागर मेरी राह में फूल गुलाब आए, कोई पानी फूंक के दे ऐसा वो पिए तो मेरे ख्वाब आए, कोई ऐसा काला जादू कर वो जो जगमग कर दे मेरे दिन, कोई ऐसा काला जादू कर जो जगमग कर दे मेरे दिन, वो कहे मुबारक जल्दी या अब जिया न जाए तेरे बिन, कोई ऐसी राह पे डाल मुझे जिस राह से वो दिलदार मिले, कोई तस्बीह दम दुरूद बता जिसे पढ़ूं तो मेरा यार मिले, कोई काबू कर बेकाबू जिन, कोई सांप निकाल पठारी से, कोई धागा खींच परांदे का कोई मन का अक्षा धारी से, कोई ऐसा बोल सिखा देना वो समझे खुश गुफ्तार हूं मैं, कोई ऐसा अमल करा मुझसे वो जाने जान निसार हूं मैं, कोई ढूंढ के वो कस्तूरी ला उसे लगे मैं चांद के जैसा हूं, जो मर्जी मेरे यार की है, जो मर्जी मेरे मेरे यार की है उसे लगे मैं बिल्कुल वैसा हूं, कोई ऐसा इसमें आजम पढ़ जो इश्क बहा दे सजदों में, और जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में, जैसे तेरा दावा है महबूब हो मेरे कदमों में। पर आमिल रुक एक बात कहूं, आमिल रुक एक बात कहूं, ये कदमों वाली बात है क्या, ये कदमों वाली बात है क्या, महबूब तो है सर आंखों पर मुझ पत्थर की औकात है क्या, और आमिल सुन ये काम बदल, ये काम बहुत नुकसान का है, सब धागे उसके हाथ में हैं जो जो मालिक कुल जहान का है, सब धागे उसके हाथ में हैं जो मालिक कुल जहान का है।

जी हाँ जनाब, ऐसा है कि बानो कुत्सिया ने कहा था कि मोहब्बत वो पिंजरा है जिसमें हम खुद को कैद रखते हैं, लेकिन इसका दरवाजा मुकफल नहीं होता। कुछ ऐसे काम कर जाया करते हैं हम इंसान जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। कोई ऐसी गलती हो जाया करती है। यह मोहब्बत जिसको अपने नरगे में लेती है, उसकी ख्वाहिश हुआ करती है अपनी मोहब्बत को हासिल कर लेना, और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ लोग किसी ऐसी हद तक भी चले जाते हैं। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे, तमाम छोड़ो बस एक कर लो जो इस्तखारा तो मैं तुम्हारा। मोहब्बत के मानी समझ नहीं पाते हैं जो लोग, वो ऐसी राहों को इख्तियार कर लेते हैं। मोहब्बत तो एक जज्बा है जो हर इंसान के अंदर वदियत कर दिया गया है, हर इंसान की जात के अंदर मुंजमद ये जज्बा, जिसको कोई तमाजत इस मकसद के लिए पिघलाती है कि फिर वो इस जज्बे से सरशार हो जाए और सरापा मोहब्बत बन जाए। लेकिन इस नुक्ते को समझने में कभी कभी बहुत देर लग जाती है।

तो क्या है कि ये जो मोहब्बत का एक दौर गुजरता है इंसान की ज़िंदगी में, जब वह इसके ज़ेरे असर होता है, जब तक इसको परख रहा होता है, जब तक इसको जानने की कोशिश कर रहा होता है, तब जब कुछ बन नहीं पाता तो फिर इंसान है आखिर क्या कर सकता है। जहाँ तक उसका बस चलता है वो अपना बस चलाने की कोशिश तो करता ही है, सही और गलत का फैसला कर नहीं पाता जब, तो फिर इस तरह की राहें हुआ करती हैं। लेकिन इससे हटकर अगर सिर्फ उस दौर को देखें तो इंसान बड़े मासूम हुआ करते हैं, उनके पास कुछ छोटी छोटी उम्मीदें हुआ करती हैं जिनसे वो अपने दर्द को, अपने कर्ब को अपने तहीं अपने तखय्युल में कम करने की काबिश में लगे रहते हैं। किसी हद तक कुदरत भी मेहरबान हुआ करती है, कुछ लम्हे दे दिया करती है, कुछ तन्हाई दे दिया करती है, कोई ऐसी रात जिसमें कुछ तन्हाई मुयस्सर आ जाती है, और फिर ये आंखें और इन आंखों में आंसू, ये आंसू बड़े कारामत साबित हो जाया करते हैं। यूं लगता है कि जैसे बहुत सा बोझ इन आंसुओं के जरिए बह जाता है। ये आंखें ही हैं जो बहुत सी तस्वीर हमारे जहन में मुनक्कश कर दिया करती हैं, मनाजिर हुआ करते हैं जो हम अपने तखय्युल की दुनिया में खुद सजाते हैं, खुद बनाते हैं, उन मनाजिर में जीना चाहते हैं और जिया करते भी हैं। और यही आंखें हैं जो बंद हो जाती हैं जब हम उस तकलीफ को सोच रहे होते हैं जो माजी में बीत चुकी होती है, और यही आंखें हैं जिनसे आंसू बह निकले तो यूं लगता है कि दिल हल्का हो गया, बोझ हल्का हो गया, बहुत कुछ अपने साथ बहा ले जाती हैं। और किसी हद तक इंसान चंद लम्हों के लिए ही सही कुछ तस्कीन महसूस करता ही है। तो ये भी एक तरह से कुदरत की मेहरबानी ही हुआ करती है उस इंसान के लिए जो शायद समझ नहीं पा रहा होता कि उसको क्यों चुना गया, उसको क्यों मुनफरिद किया गया, ये जज्बा क्यों पिघल के उसके वजूद में हर हद तक सरायत करता चला जा रहा है, और वो क्यों खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा है। सारे रेशों की तनावें दुखने लग जाती हैं उस दर्द को महसूस करने के लिए। और जाने कब रात बीत जाती है मालूम नहीं पड़ता, और एक रोशनी की किरण जो खिड़की से कमरे में दाखिल होती है, अगर देखना चाहे इंसान तो एक नवीद हुआ करती है। लेकिन उससे पहले की रात, कल रात जाने क्या हुआ, कुछ देर पहले नींद से कुछ अश्क मिलने आ गए, कल रात जाने क्या हुआ कुछ देर पहले नींद से कुछ अश्क मिलने आ गए, कुछ ख्वाब भी टूटे हुए, कुछ लोग भी भूले हुए, कुछ रास्ता भटकी हुई, कुछ गर्द में लिपटी हुई, कुछ बेतरह फैली हुई, कुछ खोल में सिमटी हुई, बेरब्त सी सोचे कई, भूली हुई बातें कई, एक शख्स की यादें कई, एक शख्स की यादें कई। फिर देर तक जागे रहे, सोचों में गुम बैठे रहे, उंगली से ठंडे फर्श पर एक नाम बस लिखते रहे,
उंगली से ठंडे फर्श पर एक नाम बस लिखते रहे। कल रात भी वो रात थी, कुछ देर पहले नींद से हम देर तक रोते रहे, हम देर तक रोते रहे, कुछ देर पहले नींद से हम देर तक रोते रहे।

बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो तुम मर जाएंगे। रक्स है रंग पर रंग हम रक्स हैं, सब बिछड़ जाएंगे, सब बिखर जाएंगे। और कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिल जो हूं मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। है गनीमत के असरार हस्ती से हम बेखबर आए हैं, बेखबर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे।

मैं 10 तरस से तुम्हारी निकल भी सकता हूँ, ये सोच लो कि मैं रास्ता बदल भी सकता हूँ। तुम्हारे बाद ये जाना कि मैं जो पत्थर था, तुम्हारे बाद किसी दम पे घल भी सकता हूँ। कलम है हाथ में, किरदार भी मेरे बस में, अगर मैं चाहूँ कहानी बदल भी सकता हूँ। और मेरी सरिश्त में वैसे तो खुश्क दरिया है, अगर पुकार ले सहरा उबल भी सकता हूँ। और उसे कहो कि गुरेजाना यूं रहे मुझसे, मैं एहतियात की बारिश में जल भी सकता हूँ।

और पीर नसीरुद्दीन शाह साहब की एक खूबसूरत सी गजल शामिल करने का जी चाह रहा है। कहते हैं कि कभी उनका नाम लेना, कभी उनकी बात करना, मेरा जौक उनकी चाहत, मेरा शौक उन पे मरना। वो किसी की झील आंखें, वो मेरी जुनू मिजाजी, कभी डूबना उभर के, कभी डूब कर उभरना। तेरे मन चलों का जग में यह अजब चलन रहा है, न किसी की बात सुनना, न किसी से बात करना। और शबे गम ना पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, शबे गम ना पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी। कभी आह भर के गिरना, कभी गिर के आह भरना, वो तेरी गली के तेवर, वो नजर नजर पे पहरे, वो मेरा किसी बहाने तुझे देखते गुजरना। कहां मेरे दिल की हसरत, कहां मेरी नारसाई, कहां तेरे गैसुओं का तेरे दोष पर बिखरना। चले लाख चाल दुनिया हो, जमाना लाख दुश्मन, जो तेरी पनाह में हो उसे क्या किसी से डरना। और वो करेंगे ना खुदाई तो लगेगी पार कश्ती, है नसीर वरना मुश्किल तेरा पार यूं उतरना।

जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल हा साल तक चली है। जो बात गिनती के चंद दिनों से शुरू हुई थी वो साल हा साल तक चली है, कई जमानों में बट गई है। मैं उन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं। मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं। मैं उन जमानों में लम्हा लम्हा तुम्हारी नजरों के बिन रहा हूं। मैं अब तलक भी

के मुड़ने से मुंसलिक है। उन्हें बताओ तुम्हारे जाने का दुख उठाकर, तुम्हारे जाने का दुख उठाकर फकत अकेला वो मैं नहीं था जो जर्रा जर्रा बिखर गया था। तुम्हारे जाने के कुछ दिनों में हमारा हॉकिंग भी मर गया था और उसकी थ्योरी के काले गढ़े जिन्हें हमेशा तुम्हारी आंखों में देखना था वो मेरे चेहरे पे पड़ गए हैं, वो मेरी आंखों में गड़ गए हैं। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ ही 180 के जाविये पे पलट गया है कि मेरा होना तुम्हारे होने से मुंसलिक था। तुम्हारी आंखों की रोशनी थी तो मैं भी दुनिया में हो रहा था। तुम्हारे लहजे के सुर मिले थे तो मैं बना था। तुम्हारे हाथों का लम्स हाथों को मिल रहा था तो देखता था हमारे हाथों के एटमों की दफा की कुव्वत कशिश में कैसे बदल रही है। पर अब तुम्हारी नजर कहीं है, तुम्हारा लहजा भी अब नहीं है, तो तुम बताओ मैं किस तरीके से अपनी हस्ती को नेस्ती से जुदा करूंगा। मैं दंग आंखों से सारी दुनिया को देखता हूं और अपने होने की कोई इल्लत तलाशता हूं। अजीब तरह का बेनिशान बेमकाम दुख है। समझने वाले समझ गए थे ये रायगानी है। रायगानी तमाम सदियों का खाम दुख है। मैं अब हकीकत समझ रहा हूं। तमाम दुख था, तमाम दुख है। तुम्हें बताऊं किसी के होने का कोई मकसद कोई मानी कहीं नहीं है। अगर तो निश्चय नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पर रह के। अगर तो निश्चय नहीं मरा है तो उससे पूछो कि क्या करेंगे जमीन पर रह के। पलें भड़ेंगे बका की खातिर लड़े मरेंगे, फिर अपने जैसे कई जनेंगे और इस जहां से निकल पड़ेंगे। जिन्हें जनेंगे वो सब के सब भी यही करेंगे, लड़े मरेंगे पले बढ़ेंगे फिर उनके बच्चे और उनके बच्चे। ये क्या तमाशा है, हाय हु है, ये जिंदगी है तो अख्तू है। इसी कराहत के साथ कितने जमा गुजारूं मैं, किस मुरव्वत में रायगानी का दुख गले से लगाए रखूं। तुम्हें बताऊं कि ये अजियत भी बेपनाह है। मैं ऐसी हालत में जिस जगह जितने दिन जी रहा हूं, मैं अब तलक भी तुम्हारे जाने का बाकी नुकसान गिन रहा हूं।

मेरा नाम है आतिर अली सैयद और FM 101 इंटरनेशनल सुन रहे हैं आप। वक्त करीब आन पहुंचा है कि चंद लम्हों में आपसे इजाज़त लेनी होगी, और जाने से पहले हमेशा की तरह चंद जुमले जो काबिश हुआ करती है कि आपके तवस्सुत से अपने आप को समझाता चलूं।

मोहब्बत को खोजता हुआ इंसान और मोहब्बत के निर्गह में खुद को कैदी महसूस करता हुआ इंसान, मोहब्बत को हासिल करने की तगोदो में, कर्ब उठाता हुआ तकलीफ उठाता हुआ इंसान, और फिर उस दर्द को यूं कह देता है कि ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, लेकिन दर हकीकत ये आग का दरिया है नहीं, इंसान को बहुत सी चीजों का इदराक हुआ नहीं करता है। इंसान वो वाहिद मखलूक है जो इस दुनिया में आकर सीखता है, जो कुछ उसको मैसर आता है, जैसा माहौल मैसर आता है वो उसी से सीखता है, और जो उसका मुशाहिदा हुआ करता है, जो उसके तजर्बात हुआ करते हैं, वो उसकी जिंदगी को, उसकी शख्सियत को एक शक्ल देते चले जाते हैं, जिसके साथ साथ इंसान एक शऊरी जिबिल्लत रखता है, एक शऊर है जो उसको सही गलत में तफरीक सिखा दिया करता है, और ये रब्बे कायनात की इनायत है इंसान पर कि हिस्से अखलाकियात उसकी ज़ात के अंदर वदियत कर दी गई है, हिस्से जमालियात उसकी ज़ात के अंदर मौजूद है, वो अच्छे और बुरे में फ़र्क महसूस कर सकता है, वो खूबसूरत और बदसूरत में फ़र्क महसूस कर सकता है, और यही उसका इम्तिहान हुआ करता है कि जब वो फर्क महसूस कर रहा है, उसके अंदर से एक आवाज आ रही है, उसको मालूम पड़ रहा है कि जो वो कर रहा है वो गलत है, उसके बावजूद वो अपने नफ्स की ख्वाहिश को नहीं छोड़ता और उस राह पर चलता रहता है, तो उसका सफर हुआ करता है जुलमात की जानिब। लेकिन इंसान है, खता का पुतला है, बस इतनी एहतियात हो के दिलों पर कुफल न पड़ जाए। क्योंकि इंसान ही है जो हद से तजावुज भी कर जाया करता है, इंसान ही है जो कमजोर भी है, और इंसान ही है जिसने आगे बढ़कर कबूल किया जब पहाड़ों ने इनकार कर दिया, जब कायनात की हर शय ने इनकार कर दिया, तो इंसान ने उस राह को थामा और इस दुनिया में आ गया एक खलीफा बनकर। तो यहां आने के बाद अपने इरादा और इख्तियार के बावजूद जब हम इंसान खुद को लगाम डाल लिया करते हैं, खुद को रोक लिया करते हैं, अपने अंदर की उस आवाज को सुन लिया करते हैं, तो फिर वो जुलमात छटने लग जाती हैं, फिर नूर सरायत करता है हमारी जिंदगियों में, वो नूर जो सबसे बड़ी हकीकत है, वो नूर जो कि मंजिल है और जिसका रास्ता सिराते मुस्तकीम है। और वो जिसको हम मोहब्बत समझते हैं और जिसको हम महदूद कर दिया करते हैं, उस राह पर चलने वालों की मोहब्बत ये नहीं हुआ करती, उनकी मोहब्बत लामहदूद होती है, उनकी मोहब्बत किसी एक से मंसूब नहीं होती, उनकी मोहब्बत तमाम खलकत से मंसूब होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि सबकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, चाहे बोले ना वो, लब को खोले ना वो, दिल अलग बात है, अपने लहजे में भी प्यार घोले ना वो, अपना जो फर्ज है इस तरह हो अदा जैसे एक कर्ज है, कोई जो कुछ कहे उसकी सुनते रहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो।
بخیالی میں ہی لب اگر کھل جائیں اور زبان پر کبھی کوئی سچ آ گیا, یوں سمجھ لو کہ پھر جس سلسلے جتنے تھے درمیان جو بھی تھا خواب دیکھے تھے, جو سب بکھر جائیں گے. ایسا کرنا نہیں. سب کی سننا مگر تم, بکھرنا نہیں.

मसले सब के सब हैं सफेदों से या मसलों में कभी रंग भरना नहीं। दिल में अगर प्यार हो लब पे इकरार हो, प्यार ही प्यार बस हरफे इजहार हो। गर अना ये कहे दिल ना मिल पाएंगे, इस पे मत जाइए खोटी है ये अना, इससे कुछ ना बना। दिल की बातें सुनो फासले से सही, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। रास्ता एक है मुद्दा एक है, एक हमारी है क्या सारी दुनिया का ही सिलसिला एक है। एक आए थे हम एक आए थे तुम, एक है ये सफर भीड़ कितनी भी हो अपनी अपनी जगह हर कोई एक है। नाम है गो जुदा पर खुदा एक है, बस बस खुदा की तरह सबकी सुनते रहो प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। कहने सुनने से तो कुछ बदलता नहीं, रात जाती नहीं दिन ठहरता नहीं, होने वाला है क्या कुछ भी खुलता नहीं। वक्त कम है बहुत, इतने कम वक्त में जिस कदर कर सको प्यार करते रहो और कुछ ना कहो, प्यार करते रहो और कुछ ना कहो। उस सिराते मुस्तकीम पर चलने वालों का बस यही पैगाम हुआ करता है। कि जबान में इतनी मिठास हो कि कानों में रस घुलने लगे और चेहरे पे इतना नूर हो कि जिसकी निगाह उस चेहरे पर पड़े उसकी आंखें खीरा हो जाए। नजर दौड़ाएं तो ऐसे लोग मिलते हैं, ये वो लोग हैं जो सिराते मुस्तकीम वाले लोग हैं, जो अनमतालेहिम वाले लोग हैं, जिन्होंने उस मंजिल को पा लिया वो जो नूर है, अल्लाह नूर उस समावाती वलर्स, जो जमीन व आसमां का नूर है, और जो कहते हैं कि हम तुम्हें जुलमात से निकाल कर नूर की जानिब ले जाएंगे। लेकिन उसके लिए खुद को तैयार करना होगा उस राह पर झूमते हुए चलने के लिए जिस राह की मंजिल बहुत खूबसूरत है, और जो मंजिलें खूबसूरत हों उन मंजिलों की राहें उनसे मोहब्बत हो जाया करती है। फिर अनंता लहिम वाले झूमते फिरते हैं उन राहों पर और गामजन रहते हैं अपनी मंजिल की जानिब। जो चाहिए जिंदगी में वो तकसीम कीजिए, खुशियां चाहिए तो खुशियां बांटिए, आसानियां चाहिए तो आसानियों का सामान पैदा कीजिए, अपनी तकलीफ से राहत चाहिए तो किसी और के पाँव में चुभा हुआ कांटा निकालिए। रब ताला की नेमत और बरकतों का नजूल होगा आपकी जिंदगी पर। कुछ अच्छा लगा हो तो दस्ते दुआ जब बुलंद हो नाचीज को याद रखिएगा, और कोई बात समा खराशी का बायस बनी हो तो माजत चाहूंगा। सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह अगले इतवार की शब आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने मेजबान आतिर अली सैयद को अब इजाजत दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।

साथ दिल के चले, दिल को नहीं रोका हमने, जो न अपना था उसे टूट के चाहा हमने। एक धोखे में कटी उम्र हमारी सारी, क्या बताएं किसे पाया।